0: Castro Constantini, and much more.
1: What? Italmod Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo Italmod Furniture pe. Agli party hamare ghar pe.
2: Italmod Furniture, 685 New Jersey 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodfurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और बूता हो तो राहत इंदौरी साहब सा। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और मेरे ख्याल से उर्दू अदब में शायरी की दुनिया में जो भी शख्स कदम रखता है ना उसकी नजर और ध्यान सबसे पहले पड़ता है राहत साहब पर। आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर शायरों के नाम गिनाने पे बात आ जाए तो गुलजार और राहत साहब का नाम लेने के बाद बहुत लोग शांत पड़ जाएंगे। हाल में ही बहुत आंधी तूफान के दौर से हम सब गुजरे और उसी पे एक बड़ा प्यारा सा शेर है राहत साहब का। लिखते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कितना असरदार शेर है दोस्त। और उनके बोलने का ढंग ना, मैं सच बता रहा हूं, जब मैंने शेर पढ़ा मुझे उन्हीं की आवाज में सुनाई दिया ये। ही वॉज रियली वन ऑफ अ काइंड। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और उन गानों में कुछ तो बात होती थी।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और हाँ जी, बिल्कुल वक्त आ चला है आपको आज का ताशी अनप्लग्ड का पहला गाना सुनाने का। और ये जो गाना है ना, इंदिवर साहब की कलम से निकला हुआ है, मुकेश जी ने इसे गाया। वन ऑफ द वेरी आइकॉनिक सॉन्ग्स दैट ही संग। लता मंगेशकर जी ने भी इसे गाया। और पिछले गानों में कुछ तो बात होती थी। चंदन सा बदन चंचल चितवन,
3: चंदन सा बदन चंचल चितवन,

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo maza kar.
4: T-Series present The Mall 4.
5: Gulodi bina chatni kaise bani.
4: Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
6: Oh, kudiyo, gudi

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल टूटने से भी ज्यादा बुरा क्या होता है। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और एक जमाने तक मुझे भी ऐसा लगता था कि दिल टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना इज द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज है। मगर फिर पता चला कि दिल किसी से उठ जाना उससे भी बुरी। साहिर लुधियानवी साहब का शेर हाल में पढ़ा कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। हाय हाय, दिल टूटने पे कम से कम आप ये तो कह सकते थे कि आपके साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, बड़ा मेरा दिल टूट गया। लेकिन दिल उठ जाने पर तो आप ये तक नहीं कर पाएंगे। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। आए हाय, मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।
2: सरकते जा

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirchi, murga. Murga.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
3: स्पीकिंग
4: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
3: लगता क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
4: ओके.
3: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर
4: हैं.
3: इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
4: राइट.
3: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
4: ओके.
3: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
4: हाँ.
3: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
4: कितने बजे गई थी आप?
3: साढ़े दस बजे.
4: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
3: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
4: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
3: मुझे बड़ी जरूरी काम
4: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे, आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
3: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
4: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
3: ये खुद गुस्से में हो.
4: खुद गुस्से में आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
3: आप हद से ज्यादा
4: हद से क्या बात कर रहे हैं?
3: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
4: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
3: नहीं कर सकते आप.
4: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
3: की सुरक्षा की बात करें.
4: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागर फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर.
3: ओके ओके ओके
4: ओके ओके ओके मेरी बात सुनिए. कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी साढ़े दस बजे?
3: हाँ जी, मैं गुस्सा दिलाया.
4: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
3: ओके कुकड़ू कू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और अब मिर्ची महफिल में वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर
1: कि काफी सीरियस बातें और गजलों के बीच आपका ताशी आपको नजर करे अपने कुछ पसंदीदा लतीफे। हाँ जी, मोहम्मद यूनुस बट साहब की जानिब से आ रहे हैं ये लतीफे आप तक। और बट साहब लिखते हैं कि एक खातून ने होने वाले खाविंद माने कि अपने शौहर से कहा, शादी के बाद मैं आपके दुख बांटा करूंगी। उसने कहा, मगर मुझे तो कोई दुख नहीं। तो वो बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं। शायद इसीलिए हर सियासतदान मतलब नेता यही कहता है, अगर मैं जीत गया तो आपके दुख बांटूंगा। मजाहिया बातें चल ही रही हैं, तो एक और लतीफा सुने बट साहब का। लिखते हैं कि औरतों की आधी उम्र तो अपनी उम्र कम करने में गुजर जाती है। एक मुलाजिमत के इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, मोहतरमा आपकी उम्र? जवाब मिला, 19 साल कुछ महीने। पूछा, कितने महीने? जवाब मिला, 96 महीने। बाप रे, वो भी क्या दिन थे जब चुटकुले लतीफे हमारी जिंदगी में आम हुआ करते थे कहीं ना कहीं। आपका ताशी है आपके साथ मिर्ची महफिल पर। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: आ जाओ आगरा वाले दिल्ली वाले मुंबई वाले चेन्नई वाले इंदौर वाले जो भी जहाँ से भी है सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
0: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
1: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
0: कि आपकी उर्दू लफ्जों की आर्सेनल में एक और इजाफा किया जाए और बताया जाए आज का लफ्ज, हाँ जी, जो कि है जुस्तजू। जुस्तजू का मानी हुआ सर्च या तलाश, विश या ख्वाहिश। लेजेंड मिर्जा गालिब साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो जुस्तजू का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। शहरयार साहब ने भी अपनी गजल में इस लफ्ज का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जिसे खयाम साहब ने म्यूजिक दिया और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज से नवाजा। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। अगर सोचा जाए फरिश्ते का किरदार बड़ा ही यूनी डायमेंशनल होता है, बड़ा ही एक तरफा होता है, सब कुछ अच्छा, मगर इंसान पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली साहब का एक शेर याद आता है, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। सच भी है, जिंदगी की सारी कश्मकश से डील करते हुए अगर आप आज एक भी अच्छा काम कर पाए हों, शाबाशी दीजिएगा खुद को। ताशी है आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. La fiat bala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
3: Thank you.
4: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
3: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ,
4: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
3: मतलब गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
3: आओ मिलो
4: शिलो शालो,
3: शालो
4: कच्चा
3: धागा,
4: रेस
3: लगा लो,
4: दस
3: पत्ते तोड़े,
4: एक
3: पत्ता कच्चा.
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
3: तोड़े.
4: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े
3: दस पत्ते तोड़े.
4: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
3: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
4: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू.
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
3: मिस्टर
4: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
3: यार ये कोई सुनेगा
4: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। और शायरी में खत जो है वो आशिक और उसके माशूक के दरमियान की एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को शायरों की इमेजिनेशन ने और ज्यादा रंगारंग बना दिया है। अगर आपने खत को मौजू बनाने वाली शायरी नहीं पढ़ी तो गोया आप क्लासिकी शायरी के एक बहुत दिलचस्प हिस्से से ना आशना है, अनइंट्रोड्यूस्ड है। शकील बदायूनी साहब का जो खत आना था वो आ गया, तो उन्होंने लिखा, काफी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आ न सके, आपका पैगाम तो आया। उधर कैव भोपाली साहब के यहाँ खत नहीं आया, तो उन्होंने लिखा, दिले नादान न धड़क, ए दिले नादान न धड़क, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। ओए होए, आज के जमाने में जो खटाखट बातचीत हो गई है ना, उससे कॉन्वर्सेशन का कुछ मजा तो चला ही गया यार। खैर, आप सुनते रहे मिर्ची महफिल, हमारे और आपके बीच में जो बातचीत है वो जिंदा रहे। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी था आपके साथ। इट्स टाइम फॉर मी टू गो, लेकिन जाने से पहले, जगजीत साहब को यूं ही नहीं कहा जाता था दैट ही ब्रॉट गजल्स टू द मासेस। उन्होंने नॉर्मल जनता तक गजलों को पहुंचाया और ये गजल जो मैं अब गाने वाला हूं आपके लिए आज के ताशी अनप्लग्ड में, मेरे ख्याल से इसका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल था उस नॉर्मल जनता तक पहुंचने का। दिस इज होश वालों को खबर क्या, सिर्फ आपके लिए।

पता होश वालों को कि बेखुदी क्या चीज है। बहरहाल अगर आप मुझसे और बात करना चाहें तो आ सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक जब 4 साल के थे तो उनके मामा गोविंदा उनको कंधे पे बिठा के वैष्णो देवी लेके गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ये स्टोरी उन्होंने काफी टीवी शोज में शेयर भी की है और सीन कुछ यूँ था कि गोविंदा ने अपनी सिस्टर के लिए मन्नत मांगी थी और जब वो मन्नत पूरी हो गई और वो मन्नत जब 4 साल की हो गई यानी कि कृष्णा अभिषेक, तो वो उनको अपने कंधे पे बिठा के वैष्णो देवी लेकर गए और वहां से जब वो वापस आए तो उनके पैर सूज गए थे, पैरों में दर्द बहुत था। इस वजह से गाने की शूटिंग होनी थी, राकेश रोशन साहब की फिल्म का वो गाना था, वो एक दिन आगे पोस्टपोन कर दिया गया। तो भी गोविंदा के पैर में काफी दर्द और सूजन वगैरह थी, पर उन्होंने क्या डांस किया, वही गाना सुनते हैं यहाँ पर। राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ, इंदवर साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद अजीज साधना सरगम की आवाज, फिल्म का नाम खुद गर्ज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
4: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है। एक सेकंड रुको
3: भाई, ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे भसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
4: तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने ले गया
4: तुमने पहले के लिए बताया
3: कौन है? चोरी कर रहा, मुझे
4: फसवाएगा।
3: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
4: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है,
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ए पटाक,
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

1985 की फिल्म साहब में मेन हीरो यानी कि अनिल कपूर को एक फुटबॉल प्लेयर दिखाया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये सोचिए 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट इतना पॉपुलर था तब, और तब किसी फिल्म में हीरो को फुटबॉल प्लेयर दिखाया जाए। वेल, इसकी एक वजह यह भी है कि एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी और बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न साइड फुटबॉल गेम कितनी पॉपुलर है ये हम सब जानते हैं। खैर, कई बार सोच के बुरा भी लगता है कि ये गेम इतनी पॉपुलर है, इस गेम से जुड़ा इतना टैलेंट है हमारे देश में, तो भी इंडियन फुटबॉल को बढ़ावा देने की, उसे सपोर्ट करने की किसी को पड़ी ही नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द फिल्म, इस फिल्म में ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी बहुत सारी पब्लिक को पहली बार पता चला था। और इस फिल्म की एक और हाईलाइट, इसका ये गाना, बप्पी लहरी का कॉम्पोजिशन, अनजान साहब का लिखा हुआ, बप्पी लहरी एस जानकी की आवाज। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
2: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: पुरानी जींस चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 की फिल्म परिंदा के गाने लिखने के लिए पहले गुलजार साहब फिर निदा फाजली साहब को अप्रोच किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ये बात इस फिल्म के लिरिसिस्ट खुर्शीद हिल्लौरी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, लेकिन उन दोनों शायरों ने इसके गाने लिखने से मना कर दिया या कोई बात नहीं बन पाई। तब कुछ यूं हुआ कि फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा फिल्म के डायलॉग राइटर इम्तियाज हुसैन साहब के यहाँ लंच पे गए, और जब लंच वगैरह रेडी हो रहा था तब उनके घर में एक ऑडियो कैसेट चल रही थी जिसमें कुछ गजलें चल रही थी। तब चोपड़ा साहब ने हुसैन साहब से पूछा कि भाई ये किसकी गजलें हैं, किसने लिखी? तो उन्होंने बताया कि खुर्शीद हिल्लौरी नाम के एक पोएट हैं, उनकी है। तब हिल्लौरी साहब को अप्रोच किया गया और तब उन्होंने परिंदा के ये आइकॉनिक गाने लिखे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

आज की ताजा खबर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और 1973 की एक कॉमेडी फिल्म है मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी प्लीज देखिए। डायरेक्टेड बाय राजेंद्र भाटिया एंड सो वेरी वेल रिटन बाय मूल राज राजदा। ये फिल्म में गुजराती प्ले चकदोल से अडेप्टेड है। इसमें किरण कुमार, असरानी जी की वाइफ मंजू बंसल, राधा सलूजा, IAS जौहर, ये एक्टर्स हैं। बहुत सारे एक्टर्स और हैं, लेकिन तो भी मेन लीड में मैं कहूंगी कोई एक्टर नहीं, एक फिल्म का किरदार है। इस किरदार का नाम है चंपक भूमिया। अच्छा, इस फिल्म के लिए ना असरानी साहब को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे उनका काम तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन IAS जौहर साहब ने जो कॉमेडी की है ना यार, इट इज टू गुड। ही ऑल्सो डिजर्व्ड एन अवार्ड फॉर दैट। एनीवे, जब मौका मिले ये फिल्म जरूर देखिएगा। ए बाय द वे, इसके बाद में रीमेक भी बने थे। एक तो मराठी फिल्म थी फेंका फेंकी, एंड देन 2008 की गोलमाल रिटर्न्स, उसका जो प्लॉट था वो भी इसी से इंस्पायर्ड था। फिलहाल के लिए वी टेक अ ब्रेक, इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: जंजीर फिल्म को हम एक डेकेड डिफाइनिंग फिल्म बोल सकते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इस फिल्म के वन ऑफ द राइटर्स जावेद अख्तर साहब ने एक टीवी शो में इस फिल्म के बारे में सुनिए क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली इस कहानी का तो मैं क्रेडिट सलीम साहब को देना चाहूंगा। बेसिक लाइन है और जो कैरेक्टर है एंग्री यंग मैन का। अब जो हमने मनाई किस वक्त कि जब आरडी बर्मन पीक पे था, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पीक पे थे, सुपरहिट म्यूजिक चल रही थी, राजेश खन्ना द रोमांटिक सिंगिंग स्टार, उस वक्त हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता, रोमांस ही नहीं करता, जिसमें हीरो की कोई कॉमेडी नहीं है। अब ये मार्केट के खिलाफ बात। अब ये एक टॉल सीरियस फेस का इंटेंस लड़का, यार ये तो अलग ही है, एक तो लंबा बहुत है यार, तो इतने लंबे हीरो नहीं होते थे।
0: वेल, इनके हिसाब से इस फिल्म के लिए किसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो भी इन्होंने शेयर किया था। थोड़ी देर के बाद सुनते हैं। राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

0: जंजीर फिल्म की सफलता का क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में फिल्म के वन ऑफ द राइटर्स जावेद अख्तर साहब ने एक टीवी शो में सुनिए क्या शेयर किया था।
1: एक बात बताऊँ इस बारे में, हम लोग की तो बहुत तारीफ होती रहती है, लेकिन एक इंसान जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं होता, उसका नाम है प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा ने ये कहानी ली और ये उनका पहला प्रोडक्शन होने वाला था, और ये कहानी हर सक्सेसफुल हीरो ने रिजेक्ट कर दी। हर हीरो कह रहा है कि कहानी ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा। उसने कहा कि बनाऊंगा तो मैं सलाम करता हूँ। उसके बाद ये बड़ा अच्छा हुआ कि हर हीरो ने रिफ्यूज कर दिया। ये हमारी किस्मत थी कि हमें अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर इस रोल के लिए।
0: क्या बात है साहब, ये जिस तरह से बात करते हैं ना मजा आ जाता है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: आ जाओ आगरा वाले, दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहां से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
2: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है। रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only

खयाम साहब का कंपोज किया हुआ गाना थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और आपको पता है खयाम साहब ने अपने उसूलों अपने प्रिंसिपल्स की वजह से बहुत सा काम खोया है, मतलब उनके हाथ से वो काम निकल गया है, वो अपॉर्चुनिटीज चली गई। क्या होता था, काफी फिल्मों में उनको ऐसा कहा जाता था कि कोई प्री एग्जिस्टिंग ट्यून है, कोई वेस्टर्न ट्यून है, उससे आप सैंपल कर लीजिए या उसको कॉपी कर लीजिए और हमारी फिल्म के लिए इस तरह का गाना बना दीजिए। इस बात से खयाम साहब ओके नहीं होते थे। उनका कहना था कि ऑलरेडी अगर ट्यून एग्जिस्ट कर रही है तो मैं क्या बनाऊंगा, मेरी कॉम्पोजिशन कहाँ से हुई। ऐसे थे उनके उसूल, ऐसे थे उनके एथिक्स। चलिए इसी बात पे खयाम साहब का एक और गाना सुनते हैं, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। दर्द फिल्म का ये गाना है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

द वेरी अडोरेबल राकेश बेदी साहब. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. बहुत सारे लोगों के लिए वो स्पेशल हैं, राइट फ्रॉम द 80s, जब वो चश्मे बद्दूर, एक दूजे के लिए और पता नहीं कितनी सारी फिल्मों में आए थे, और उससे ज्यादा टेलीविजन शोज में ज्यादा पॉपुलर हुए थे. यू नो शोज लाइक ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती, फिल्मी चक्कर, ये दुनिया गजब की, जबान संभाल के, उसके बाद फिर यस बॉस, एंड देन ऑफ कोर्स भाभी जी घर पे है हमें, अंगूरी भाभी के डैडू भूरे लाल के रोल में. वैसे आपको पता है राकेश बेदी साहब ने FTII पुणे से जब अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की थी, उसके बाद जो पहली फिल्म साइन की थी वो थी 1973 की अनामिका, संजीव कुमार जया बच्चन वाली जो फिल्म थी. लेकिन फिर उस फिल्म से उनको रिप्लेस कर दिया गया था. फिर उनकी शुरुआत आई थिंक 1979 में हुई थी विद अ फिल्म कॉल्ड हमारे तुम्हारे, जिसमें वो सपोर्टिंग कास्ट में थे. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

वाह वाह वाह वाह वाह, कुछ लाइंस पढ़ रही थी मैं, आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो पोएट का नाम है संतोष खिरवरकर और ये लिखते हैं, कितनी गहरी ये शनासाई लगे, शनासाई मतलब जान पहचान, कितनी गहरी ये शनासाई लगे, झूठ वो बोले तो सच्चाई लगे, इतना पागल हूँ मैं उनके इश्क में, भीड़ में भी मुझको तन्हाई लगे, तुम नहीं हो साथ जब मेरे सनम, शूल जैसी मुझको ये पुरवाई लगे, बागबां तेरी बदौलत ही यहाँ, हर कली गुलशन की मुरझाई लगे, चाहता हूँ इस कदर तुझको कि अब हर बुराई तेरी अच्छाई लगे। आय हाय, चलिए इसी बात पे अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तुमसे

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

1983 की सुपरहिट फिल्म हीरो जैकी श्रॉफ साहब की डेब्यू फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली एज अ हीरो एज अ मेन लीड डेब्यू फिल्म थी, उससे पहले वो देवानंद साहब की स्वामी दादा फिल्म में एक छोटू मोटू सा रोल कर चुके थे। अच्छा, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष खई इस फिल्म के लिए पहले संजय दत्त को कास्ट कर चुके थे, लेकिन संजय दत्त तब अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज से डील कर रहे थे, तो कुमार गौरव साहब के पास गए सुभाष खई। लेकिन उनके फादर राजेंद्र कुमार ने इतनी ज्यादा बड़ी प्राइस कोट की कि सुभाष गई ने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं किसी स्टार सन के साथ की फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं किसी न्यू कमर को साइन कर लूंगा। एंड देन जैकी श्रॉफ साहब केम इन द पिक्चर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ताजा खबर, ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viraniejewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

अमर अकबर एंथनी फिल्म में अकबर की मोहब्बत का नंबर वन दुश्मन था उसका ससुर तैयब अली यानी कि मुकरी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैंने कुछ दिन पहले कोई बहुत ही पुरानी पिक्चर देख रही थी, कोई लेट 40s टाइप की पिक्चर, उसमें भी मुकरी साहब थे। तो मैं सोच रही थी कितने पुराने, मतलब कितने पहले से फिल्मों में काम कर रहे थे। एंड देन मैंने रेड अबाउट हिम, आई गॉट टू नो कि मिड 40s में उनका करियर शुरू हुआ था और 50 साल के करियर में उन्होंने कुछ 600 फिल्मों में काम किया। और जब भी वो स्क्रीन पे आते थे ना, मजा सा आ जाता था, ऐसा लगता था कुछ तो मजेदार होने वाला है भाई। और उनका एक और यादगार किरदार शराबी का नथू लाल, मूछें हो तो नथू लाल जैसी हो वरना ना हो। हैट्स ऑफ टू दिस अमेजिंग कॉमेडियन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

लाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकन हस्बैंड फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े।

बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

0: के भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा।
1: बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छूटे।

डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहाँ चारिया

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब
4: मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: the budget.
1: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए. 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी. और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में. सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम.
2: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. इट्स हॉट.
3: रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट. 92.7
2: 92.7 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: का समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या हर सफलता से पहले दुख और स्ट्रगल से गुजरना जरूरी होता है? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हम बात कर रहे थे पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की, जो पीटर हॉलिंस की किताब है। उन्होंने कहा कि वी आइदर अवॉइड पेन या फिर वी ट्राई टू गेन प्लेजर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं 5 रीजंस के पीछे। तो इस बारे में हमने बात की, कहीं ना कहीं इसको शायद डिसिप्लिन लाइफ में डालने के लिए, लाने के लिए क्या ये तरीका भी अपना सकते हैं कि हम ये लिखें कि अगर मुझे ये अचीव करना है उसको डिसिप्लिन में डालने के लिए मैं एक जर्नल बनाऊं जिसमें मैं लिखूंगा कि अगर मुझे लेट्स से एक बिजनेस शुरू करना है या मुझे म्यूजिक लेसन्स लेने हैं या मुझे जिम जाना है, तो मैं उसमें ये लिखूं कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या पेन अवॉइड करूंगा, और मैं अगर करूंगा तो मैं क्या पेन अवॉइड कर सकता हूं, या मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो कौन सा पेन अवॉइड होगा, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मैं जल्दी घर पहुंच ऑफिस पहुंच सकता हूं, मैं काम रहूंगा तो मुझे इरिटेशन का पेन नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक जर्नल में लिखना शुरू करूं हर सिचुएशन में, जहां मैं मापूं कि कौन सा पेन अवॉइड हो रहा है और कौन से प्लेजर मुझे मिल रहे हैं। तो जब ये डेबिट क्रेडिट का हिसाब रहेगा तो शायद मैं अपने आप लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करूंगा।
4: या एब्सोल्युटली, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है प्रोग्रेस का, क्योंकि कई बार जब आपको ये भी पता होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई लेजी है तो कहते हैं क्या है, कल किसने देखा है, पर जब उसको ये रियलाइज होता है कि कल जब वो सफलता नहीं होंगे या उतनी मेरे पास इनकम नहीं होगी तो मेरे सामने क्या क्या स्ट्रगल खड़े हो सकते हैं, वो भी एक डिसिप्लिनिंग फैक्टर होता ही है। एंड समवेयर वी आर ऑल अवेयर, एक बच्चे को भी हम स्कूल में क्यों भेजते हैं? आज आप देखिए, एक छोटा बच्चा होता है वो कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना, बिकॉज स्कूल इज दैट फर्स्ट थिंग जहाँ से डिसिप्लिन शुरू होता है।
3: बिल्कुल,
4: आपको स्कूल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहां से अभी तक कोई डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन स्कूल से आपका डिसिप्लिन शुरू होता है।
3: बिल्कुल,
4: तो वो बच्चा तो स्कूल नहीं जाना चाहता, पर कई बार आप पेरेंट्स देखेंगे कि रोते बच्चे को भी स्कूल में छोड़कर आ जाते हैं, अगेन क्योंकि उससे उनको गेन पता है क्या होने वाला है। बच्चे को भले अभी नहीं पता है, पर पेरेंट को पता है कि अगर ये स्कूल नहीं जाएगा, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होंगे, कल को कोई जॉब नहीं होगी, सो दैट गोइंग टू स्कूल
3: इज वेरी इंपॉर्टेंट,
4: इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अ गुड लाइफ।
3: राइट,
4: वो चीज उनको पता है। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो चीजें हमें भी पता करनी पड़ती हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है, इसमें डिसिप्लिन क्यों चाहिए। सो डेफिनेटली क्या उसका गेन है और न करने से क्या उसका नुकसान है, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सफलता की असली चाबी क्या है? मेहनत, पेशेंस या सही सोच? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बहुत बार जब सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ हेल्प किताबें मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखते हैं कि जर्नल लिखना बहुत जरूरी है। जर्नल लिखने के दो तीन फायदे हैं। एक तो है कि जब आप कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये छोटे छोटे छोटे छोटे मापदंड मैंने रखे थे, माइलस्टोन्स थे, छोटी चीजें मैंने अकम्प्लिश करी इस पूरे जर्नी में, उससे हम इंस्पायर होके

0: अगली चीज करना शुरू करते हैं। और जब हम दूसरी चीज ये होती है, जब हम थोड़े डाउन होते हैं, सही चीजें नहीं चल रही होती, तब हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि यार ये मैंने किया है तो ये पॉसिबल है मेरे लिए फिर से करना। तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प किताबों में लिखा होता है कि जर्नल लिखना बहुत जरूरी है, और अक्सर ये इंसान करता नहीं है, थोड़े दिन के बाद छोड़ देता है। तो इससे भी फर्क पड़ता है लाइफ में डिसिप्लिन लाने में।
1: 100% कोई भी प्रकार का जर्नलिंग इज व्हाट, स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। चाहे आप उसको सुबह करें, कई लोग उसको रात को करते हैं। इट इज बेसिकली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक सेल्फ एनालिसिस भी है, साथ साथ एक स्व की चेकिंग भी तो हो रही है ना। एक डायरी जर्नल लिखना ऐसा होता है, आज ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वो एक आपका दिन कैसा था वो हुआ। एक जर्नलिंग होती है कि समझो आपने कुछ अकम्प्लिश किया
0: जी,
1: आपने वो लिखा, लेकिन उसके साथ ग्रेटिट्यूड भी था। उसके साथ कुछ लर्निंग्स भी थी,
0: बिल्कुल,
1: वो सब कुछ भी होता है। वो आपने कहा जब आप पीछे मुड़ करके, जिसको हम कह सकते हैं एक जर्नल हमारी सिर्फ होनी चाहिए एक्सपीरियंसेस की, वो बहुत मोटिवेटिंग होती है किसी भी लाइफ में, चाहे आप बिजनेस करें, इवन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअलिटी में भी हम कोई चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: फिर हमें उसका एक कोई एक्सपीरियंस होता है। फिर जब वो हम एक्सपीरियंस लिखते हैं, एंड समटाइम्स यू आर गोइंग थ्रू अ लो फेज, कुछ है आपका ही वो एक्सपीरियंस आपकी सस्टेनेंस करता है, आपकी पालना करता है, आपको मोटिवेट करता है कि नहीं ये हो सकता है। तो एक जर्नल है आपके जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। दूसरा एक चीज जरूर लिखनी चाहिए, जो भी जर्नलिंग का पार्ट होता है, जो प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करता है, कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो आप अचीव करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, एंड हाउ कैन यू डू इट डिफरेंटली।
0: हाँ, तो उसे खुद ही आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं और खुद ही सोल्यूशन भी बता रहे हैं इसका।
1: नहीं तो हम कई बार डिसहार्टन होकर के वो चीज छोड़ देते हैं।
0: बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज कही आपने।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: क्या ईगो को ठेस लगने के बाद ही इंसान सबसे ज्यादा ग्रो करता है? आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: एक और नेवी सील है, उनका नाम है डेविड गॉगिंस। तो वो यूज करते हैं तो कुकी जार मेथड। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, मुझे पता चला। तो कुकी जार में एक छोटा सा कुकी जार रखते हैं वो, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो अपने सारे अचीवमेंट्स पास्ट सक्सेसेस जो हैं उसको छोटे छोटे नोट्स बना के उसमें डालते रहते हैं। वो चाहे जर्नल हो चाहे कुकी जार हो, तरीका है अपना। और वो कहते हैं कि जब मैं उसको रखता हूँ, ये ध्यान में रख के करता हूँ कि वो जब मैं उन्हें वापस पढ़ता हूँ तो मैं डटे रहता हूँ, मैं बार बार उसे देख के अचीवमेंट से इंस्पायर होता हूँ। और वो कहते हैं कि बड़े अचीवमेंट्स हों सिर्फ ये जरूरी नहीं है, छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी अगर आप करोगे तो आपके माइलस्टोन्स को आप याद करते करते आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद होगी।
5: ये एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन क्या है, आपने वो अकम्प्लिशमेंट्स अपने पास रखी हैं इसलिए कि वो आपको फ्यूचर में इंकरेज करती है।
4: बिल्कुल,
5: इसलिए नहीं कि वो आपकी ईगो बढ़ाती है।
4: हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है कि ईगो ना आ जाए बीच में।
5: हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना, मैंने ये किया।
4: हाँ।
5: इसीलिए हमने कहा था कि अपने एक्सपीरियंस के साथ एक ग्रेटिट्यूड जरूर करते।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ईगो होता क्या है और ये हमारी पर्सनालिटी को कैसे शेप करता है, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: ईगो तो देखिए कई बार आ जाता है, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज में हम देखते हैं ह्यूमिलिटी आती है, लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में ईगो आ जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ईगो ना आए, ये इसका डिसिप्लिन से क्या रिश्ता है?
5: डिसिप्लिन से क्या रिश्ता है? वो तो डिसिप्लिन ने आपको वो चीज प्राप्त कराई है।
4: बिल्कुल,
5: उससे डायरेक्ट क्या रिश्ता तो कुछ नहीं है, आपके डिसिप्लिन से आपने उस चीज को अचीव किया है। लेकिन अचीव करते हुए कई बार हम क्यों कई बार कह देते हुआ मेरी मेहनत से है। हमने कुछ अचीव किया, उसमें मेरा हार्डवर्क भी था, टैलेंट भी था, डिसिप्लिन भी था। लेकिन कभी कभी आप देखें जब लोग अचीव करते हैं फिर कई बार वो कह देते हैं कि सब भगवान का दिया है।
4: बिल्कुल,
5: ये तो बड़ों के आशीर्वाद है, ये तो सबकी दुआएं हैं, होता वो मेरा ही एफर्ट है। पर हम उसको सरेंडर कर देते हैं। क्यों सरेंडर करते हैं? कि गलती से भी उस चीज की ईगो नहीं आ जाए और वो मेरे डाउनफॉल का कारण नहीं बन जाए। है मेरा एफर्ट, मेरा भी होता है, आसपास वालों की दुआओं का भी उसके अंदर एफर्ट होता है, परमात्मा की शक्तियों का भी होता है, पर उसको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कर्म किया, उसका फल मिला, अब उसको ऐसे पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि क्या ईगो की निशानी क्या होती है? अगर आपको उस चीज की ईगो है, हाउ डू यू नो इट? कई बार तो पता भी नहीं चलता ना, मुझे उस चीज का अभिमान है, पता कैसे चले? जिस भी चीज की आपको ईगो है, चाहे वो आपकी पोजीशन है, चाहे वो आपकी कोई अकम्प्लिशमेंट है, अगर उसके बारे में कोई कुछ कहता है
4: तो आपको बड़ा अच्छा लगता है।
5: अगर वो अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो कुछ कहता है और आप हर्ट हो जाते हैं तो वो आपकी ईगो है। इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स, सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का।
4: इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स,
5: इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स, यू आइडेंटिफाई विद दैट। आपको ये नहीं लगता कि ये मैंने किया और आपने उसको सरेंडर नहीं किया, लेकिन आपने उसको वो आपकी एक इमेज बन गई है, वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हैं और कल को कोई कह देता है क्या बात है, वो
4: आवाज नहीं रही इसमें, हाँ।
5: वो वाली बात नहीं थी।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: खुद की पहचान का मतलब क्या होता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी कैसे डिस्कवर करें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक इंसान ये है वो कहता है कि चलो थोड़ी मेहनत करते हैं, बेटर कर लेते हैं, और एक इंसान है कि अरे ये क्या बात हुई, मेरी आवाज को बुरा बोल दिया। तो दूसरा वाला इज अ साइन ऑफ ईगो।
4: वो ईगो का साइन है क्योंकि आप हर्ट हो गए ना, तो आप उस चीज से आइडेंटिफाई, आपको लगता है मैं बहुत अच्छा चाहे रेडियो जॉकी हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैं उससे आइडेंटिफाई करने लगता हूँ, उसको अपनी इमेज बना लेता हूँ, और फिर मुझे वो एक थ्रेटन की तरह लगता है कि किसी ने मेरी उस इमेज को
3: थ्रेटन किया है,
4: और फिर मुझे बुरा भी लगता है और डर भी लगता है कि दोबारा कोई उसके बारे में कुछ ना बोल दे। पर आपने का दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि ये आप कुछ करते हैं, ये आप है नहीं।
3: ये बहुत अच्छी बात कही।
4: दोनों में फर्क है, ये मैं करता हूँ, ये मैं हूँ नहीं,
3: ये अलग है। तो इसमें बेसिकली आप क्या कह रही हैं कि मैं को बड़ा मत बनाओ, लाइफ में बकरी मत बनो। मैं नहीं करना।
4: इसलिए बकरी की बलि चढ़ाते हैं ना। बलि किसकी चढ़ानी थी वास्तव में?
3: ईगो की
4: तो चढ़ती नहीं है, थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम किसकी बलि चढ़ा देते हैं? हम बकरी की बलि चढ़ा देते हैं। एक्चुअली वो भी एक रिचुअल है, वास्तव में जिसकी बलि चढ़ानी थी वो है अभिमान की, ईगो की, एरोगेंस की बलि चढ़ानी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इट्स हॉट। पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हमारी सोच, इमोशंस और पर्सनालिटी को कैसे मोल्ड करता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक इंसान वो है कि जो कहता है कि चलो मुझे इसे और बेटर करना, और दूसरा अपने ईगो पे ले लेता है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। शाओलिन मंक्स जो होते हैं ना, उनका कहना होता है कि नो वन कैन मास्टर कुंग फू इन एन एंटायर लाइफ टाइम। और शाओलिन मंक्स बेसिकली इतना मेडिटेट करते हैं कि कहते हैं कि पुराने ज़माने में वो जब मेडिटेट करते थे, बहुत मेडिटेट करने के बाद फिजिकली वीक महसूस करते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की साथ साथ हमें फिजिकल स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए बहुत सारे शाओलिन मंक्स ने कुंग फू की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और वो कहते हैं कि नो वन कैन मास्टर कुंग फू इन अ लाइफ टाइम। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। तो ईगो कभी नहीं आना चाहिए, जिंदगी भर आप सीखते ही रहते हैं।
4: यू आर स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। एक्चुअली में यही है, ह्यूमिलिटी क्या है, आप कभी भी कहीं पर भी और किसी से भी सीख सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत है। हमेशा सीखते रहना भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे हमको एक नया लैंग्वेज सीखना है या एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है या नया स्पोर्ट कुछ सीखना है, जब रेगुलरली हम सीखते रहते हैं उससे भी धीरे धीरे हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन बनती है, क्योंकि उसको सीखने के लिए हमको अपनी जिंदगी में थोड़ा और टाइम निकालना पड़ता है। तो नई चीजें सीखने से भी डिसिप्लिन बढ़ता है।
4: कुछ भी सीखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। नई चीजें सीखने से डिसिप्लिन बढ़ता है की जगह डिसिप्लिन होगा तो आप कोई नई चीज सीख पाएंगे। इसलिए कई लोग नई चीजें नहीं सीख पाते हैं।
3: ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, थोड़े दिनों में छोड़ देते हैं।
4: कितने लोग ट्राई करते हैं, इनफैक्ट 31 दिसंबर तो होता ही यही है।
3: 1 जनवरी रेजोल्यूशन
4: कि बस कल से मुझे ये करना है, चाहे वो, इसलिए उस समय सबसे ज्यादा जिम मेंबरशिप जाती है। उस समय सबसे ज्यादा आपके अल्कोहल और टोबैको और इसकी सेल कम हो जाती है। बट ऑल दैट हैपेंस ओनली फॉर
3: 1 month,
4: 15 days to 1 month। माना जब तक किसी चीज में दृढ़ता नहीं है तब तक सफलता मिल ही नहीं सकती। देखो, एक संकल्प करना, मैंने कहा अच्छा मैं कल से ये करूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका संकल्प बहुत अच्छा था, पर दैट इज जस्ट फर्स्ट स्टेप। फिर 99 स्टेप्स जो होते हैं ना, वो हैं आपके जो डिसिप्लिन में आते हैं, जो डिटर्मिनेशन में आते हैं। अब उसमें क्या होता है, समझो मैंने थॉट ले लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। थॉट लेना ऐसा होता है कि आपने एक बीज बो दिया
3: जी।
4: आपने बीज, बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज था, बहुत अच्छा थॉट था कि मैं कल से किसी की मदद करूंगा, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, मैं कल से व्हाटएवर, बहुत अच्छा बीज था। लेकिन वो बीज का फल कब निकलेगा, जब आप रोज उस बीज को
3: पानी देंगे
4: और उसको सही धूप मिलेगी, वो छूट जाता है।
3: तो इससे मुझे बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो जनवरी में आप जिम खोलें।
4: वो तो ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, पर जरूरी ये है कि जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं होता क्या है, थॉट लेवल पर 100% होता है,
3: इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर नहीं,
4: आते आते 50% हो जाता है। और एक्शन में आते आते वो कई बार 25% हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट है कि जो आपका थॉट है वो आपका एक्शन भी होना चाहिए। थॉट वर्ड एक्शन सेम होना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Films हमारे जीवन, expectations और emotions पर कितना गहरा असर डालती हैं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, अग्निपथ नाम है उसका। बच्चन साहब को उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था, और बाद में उसको करण जौहर ने ऋतिक रोशन के साथ भी बनाई थी। तो ओरिजिनल जो अग्निपथ है उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है। बच्चन साहब कहते हैं कि ये टेलीफोन भी अजीब चीज़ है, वहाँ से आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है। तो आप भी वही कह रही हैं कि थॉट पे लाना 100% है, वर्ड पे आते आते वो 50 हो जाता है, और करने की जब बात आती है वो 25%। तो अगर हम इस रेशियो को थोड़ा बेहतर कर लें तो हम लाइफ में थोड़ा आगे जा पाएंगे।
4: उसमें ही डिसिप्लिन आ जाता है, जिसका थॉट और एक्शन में 100% है। थॉट भी 100% है, एक्शन में भी वो चीज 100% दिखाई दे रही है, वरना डिसिप्लिन है। हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, हर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है। आप किसी भी फील्ड में सफल लोगों की कई बार एक जीवन शैली देखे, एक बार आप उनका पूरा स्केड्यूल देखे, कितना उसमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतनी सारी चीजें हैं, तो भी उसको नहीं करना। इट इज सो मच डिसिप्लिन। एक भी डिसिप्लिन नहीं होता, इट्स नॉट वन डिसिप्लिन। आज कोई मिलिट्री में जाता है, कितना डिसिप्लिन है उनके लाइफ में, चाहे वो बॉडी के लेवल पर है, सोने उठने के लेवल पर है, फैमिली के लेवल पर है, कितना मिल सकते हैं, कितना नहीं मिल सकते हैं। अब आप उसको सैक्रिफाइस बोले या आप उसको चॉइस बोले, वो तो खुशी से करते हैं। उनको वो चीज इतना कोई सैक्रिफाइस नहीं लगता उसको, उसमें तो उनको बहुत प्राइड फील होता है, उनको तो बहुत गर्व लगता है।
3: बिल्कुल,
4: उनको हमें लगता है कि बेचारों ने कितना कुछ छोड़ा, उनको नहीं लगता, उनको तो लगता है आई हैव डन इट फॉर माय कंट्री,
3: माय कंट्री।
4: तो वो और आप जितना करते जाते हैं उतना आप उस चीज में सफल होते जाते हैं।
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: catching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है, का नाम है सुमित गंजावे, और वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, आप इसे भगवान कह सकते हैं। मैंने कई बार इसकी उपस्थिति महसूस की है। बीवी से झगड़ा करता हूँ तो कप टूट जाता है, या फिर किसी ऑफिस के प्रोजेक्ट में बग निकल आता है, तो इसका मतलब ये फोर्स तो है और वो मुझे देख रही है और हर बार ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन ये मेरे अच्छे कर्मों को रिवॉर्ड क्यों नहीं कर रही? मेरी गुड फैमिली, मेरा गुड जॉब, मेरा गुड करियर, मेरा गुड हेल्थ या फ्रेंड सर्कल, क्या ये मेरा रिवॉर्ड है मेरे अच्छे कर्मों का? और इसको मैं कैसे चैनलाइज कर सकूं बेहतर प्रोग्रेस के लिए?
3: एक जो वो कह रहे होते हैं, यूनिवर्स वॉच कर रहा होता है। कभी कभी हमारी कॉन्शियंस भी वो चीज होती है। हम सबके अंदर विजडम है। कभी कभी जब हम कुछ गलत करते हैं, तो वो हमारी खुद की रियलाइजेशन होती है। हमें थोड़ा सा गिल्ट होने लगता है, हमें थोड़ा सा नेगेटिव मन में चलने लगता है, और वो नेगेटिव चलने के कारण भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है।
2: अच्छा,
3: ये दो चीजें। एक लॉ जो है वो कर्मों का तो काम करता ही है, वो अच्छे के लिए भी करता है, वो बुरे के लिए भी करता है। वो लॉ क्या है कि जो एनर्जी आपने बाहर भेजी वो लौट करके आनी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल लॉ है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होता है, आप गलत करेंगे और वो इमीडिएट होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो उन्होंने जो कहा कि एक अच्छे फ्रेंड्स हैं या अच्छी जॉब है या जो भी चीज जिसके लिए हमें अंदर में एक शुक्राना होता है, डेफिनेटली वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जो वो दूसरी बात कर रहे हैं दैट यूनिवर्स इज वॉचिंग, यूनिवर्स इज वॉचिंग नहीं होता है, जिसको हम कई बार अंतरात्मा भी कह देते हैं, कई लोग उसको कॉन्शियंस कह देते हैं। समटाइम्स द फर्स्ट टाइम व्हेन वी डू रॉन्ग, वो बहुत जोर की फील होता है। जैसे अगर मैं पहली बार झूठ बोलूं, या मैं पहली बार ड्रिंक करूं, अब वो मुझे प्रिक कर रहा होता है, तो मुझे लगता है अच्छा मैंने गलत किया ना, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे को कोई श्राप ना दे दे, मेरे साथ कोई नुकसान ना हो जाए, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा होने लग जाता है।
2: और उस समय कोई कप भी टूटे तो हम रिलेट करते हैं कि इस वजह से हुआ,
3: क्योंकि हमारा मन नेगेटिव है, हम फियर में है, हम नर्वस है, तो गलतियां हो जाती है, बग भी हो जाएगा, मग भी टूट जाएगा, वो सारे चीजें होने के चांसेस है। बिकॉज यू नो यू आर guilty, your efficiency reduces, there are higher chances of making mistakes. तो उसको कोई कह देता है यूनिवर्स देख रहा है, उसको कोई कह देता है भगवान देख रहा है, आपको पता है ना। पर आप कोई चीज बार बार गलत कर लो, पर आपको एक बार बहुत मुश्किल लगेगा। आप फर्स्ट टाइम झूठ बोलेंगे ना, तो आपको डर लगेगा किसी को पता ना लग जाए, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। सेकेंड टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड टाइम और 10 बार आपने झूठ बोल लिया,
2: एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर आप,
3: वो प्रिक नहीं होता। आपने उस कॉन्शियंस को, इनर विजडम को, इंट्यूशन को दबा दिया।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Mirchi, burka. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
1: स्पीकिंग
2: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
1: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
2: ओके.
1: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेज में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
2: राइट.
1: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
2: ओके.
1: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
2: हाँ.
1: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
2: कितने बजे गई थी आप?
1: 10:30 बजे.
2: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
1: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
2: किस तरह का काम पड़ गया था जो आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
1: मुझे बड़ी जरूरी काम
2: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
1: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
2: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
1: आप एडवाइस, आप खुद गुस्से में हो.
2: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
1: आप हद से ज्यादा ईव टीजिंग की बात कर रहे हैं.
2: क्या बात कर रहे हैं?
1: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं आप.
2: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
1: नहीं कर सकते आप.
2: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास न करें, लड़कियों
1: की लड़कियों सुरक्षा की
2: किस तरह की. नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर.
1: ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके
2: मेरी बात सुनिए. कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं 10:30 बजे?
1: मिस्टर, ये आप हैं जी, मैं आपको गुस्सा दिलाया. किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
2: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
1: ओके, कुकड़ू कू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, इजलिन.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
14: I am not going to bed with you ever again.
13: But why? What did I do?
14: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
13: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
14: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
13: Yes, come soon. Honey!
14: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
13: J&M Furniture, 175 Talmadge.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. You're hanging out with me on Mirchi Mornings. और चलो देखते हैं on this day history में कैसे कैसे plot twists हुए थे. 1787 में अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस पास किया, जिसने नई टेरिटरीज को फ्यूचर स्टेट्स बनने का रोड मैप दिया. 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जर्नलिस्ट और रेवोल्यूशनरी जॉन पॉल मारा को उनके बाथटब में ही असैसिनेट कर दिया गया. 1863 न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुआ ड्राफ्ट रायट्स, सिविल वॉर के मिलिट्री ड्राफ्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट, और अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री के सबसे वायलेंट सिविल डिस्टर्बेंसेस में से एक बन गया. 1930 में फुटबॉल फैन सुनो, पहला एवर फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वाई में किक ऑफ हुआ. तब से लेकर आज तक, लिटरली आज तक, ऑफिस प्रोडक्टिविटी और फुटबॉल फीवर का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड सा चल रहा है. नहीं, 1955 में रूथ एलिस ब्रिटेन की आखिरी वुमन बनी जिसे कैपिटल पनिशमेंट दिया गया. 1973 में अलेक्जेंडर बटरफील्ड ने वाटरगेट हियरिंग्स के दौरान व्हाइट हाउस की सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स का राज खोल दिया. 1977 ऑन न्यूयॉर्कर्स, याद रखो आज ही के दिन एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक ने न्यूयॉर्क सिटी को 25 घंटों के ब्लैकआउट में डाल दिया था, विदाउट एनी वाईफाई, विदाउट एनी नेटफ्लिक्स. ये सब उस टाइम था भी नहीं, लेकिन असली सर्वाइवल मोड तो तभी था. 1985 और फाइनली लाइव एड कॉन्सर्ट लंदन और फिलाडेल्फिया से एक साथ हुए अफ्रीकन फैमिन रिलीफ के लिए. म्यूजिक ने दुनिया को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया है बल्कि यूनाइट भी किया है, और इसीलिए तुम और मैं भी जुड़े हुए हैं. आगे आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है। रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
10: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సోలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
11: Inefficient,
12: very complex,
13: clumsy hoy,
14: confusion hi confusion.
10: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao, apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर कॉफी काफी स्ट्रॉन्ग है और फीफा का फीवर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: England booked their place in the semi-finals after a thrilling 2-1 extra time win over Norway. और हीरो कौन है? Jude Bellingham. दो गोल्स किए, including the winner in extra time. मतलब बंदा प्रेशर को मॉर्निंग चाय की तरह हैंडल करता है, सुड़क करके पी जाता है. उधर डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना भी semi-finals में पहुंच गए हैं after beating Switzerland 3-1 से. और हाँ, Lionel Messi once again pulled the strings as Argentina kept their title defense alive. England versus Argentina अब सेमीफाइनल में फुल पैसा वसूल ब्लॉकबस्टर होने वाला है. गोल्डन बूट रेस भी काफी स्पाइसी हो गई है. किलियन एम्बापे लीड्स विद 8 गोल्स, जूड बेलिंगहम इज नाउ अप टू 6, व्हाइल मेसी कंटिन्यूज टू ऐड टू हिज इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप लेगेसी. मतलब कि टैलेंट यहाँ पर अनलिमिटेड है जितने की फीफा के फैंस है. तो बताओ तुम किस टीम के साथ हो, इंग्लैंड अर्जेंटीना या बस ऑफिस में सीक्रेटली मैच देखने वाली टीम के साथ ही हो तुम? मैं पक्का से जज नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी यही हरकतें करती हूँ. और ऑफ एयर फुटबॉल की मस्ती कंटिन्यू रखो. फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो मुझसे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो मौसम जो है ना कभी कभी रिलेशनशिप की तरह बिहेव करता है। सुबह थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, दोपहर तक आते आते काफी क्लैरिटी आ जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग। और अभी टेम्परेचर जो है फिलहाल 64 डिग्री फारेनहाइट है। स्काईज आर मोस्टली क्लाउडी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि फील हो रहा है 66 डिग्री फारेनहाइट तक, थैंक्स टू ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन। गुड न्यूज ये है कि रेन की जीरो टेंशन है। पिछले 24 घंटों में भी 0 मिलीमीटर की बरसात हुई एंड अगले 24 आवर्स के लिए भी अम्ब्रेला को आज छुट्टी मिल गई है। देखो सुबह से लेकर 3 बजे तक ब्राइट सनी कंडीशंस रहने वाले हैं। अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, किड्स को कैंप ड्रॉप करने जा रहे हो या फिर ग्रोसरी रन के लिए जा रहे हो, दिस इज योर गोल्डन विंडो विच इज प्रिटी ह्यूज। शाम तक स्काई जो है वो पार्टली क्लाउडी हो जाने वाले हैं, परफेक्ट एक्सक्यूज फॉर एन इवनिंग वॉक या बैकयार्ड चाय सेशन। आज का टेम्परेचर रेंज रहने वाला है 63 से लेकर 86 डिग्री के बीच में, लेकिन फील होगा 64 से लेकर 88 डिग्री फारेनहाइट तक। ये याद रखो कि तुम्हें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और अपना SPF 50 ++++ लगाकर ही बाहर जाना है। एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहना है मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में, और मुझसे ऑफ एयर ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो तुम। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 Double 4. Right now, stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और साथ में एक सिप चाय का मार के जल्दी से सुनते हैं अराउंड द वर्ल्ड की खबरें। रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया हैज सेंट इट्स हाईली सिक्योर 2214PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट टू ईरान। ये एयरक्राफ्ट सिक्योर कम्युनिकेशंस और इमरजेंसी कमांड ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग हाई रिस्क सिचुएशंस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स लाइक दीज आर बीइंग क्लोजली वॉच्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड नंबर टू पर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड नोटिस टू द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट व्हाइल हियरिंग पिटिशंस related to allegations in a donation theft case. The court has also asked the special investigation team SIT to submit a status report. And finally, history has been served at the home of cricket. India's Yastika Bhatia has become the first woman ever to score a test century at Lord's. Unhone 113 runs ki brilliant innings kheli aur India ko strong position mein pahunchaya. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla. Sun rahe ho Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X pe, mera handle है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
1: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
0: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
1: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
0: चोरी करने ले गया
1: वाले। तुमने पहले के लिए बताया
0: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा बहन।
1: मेरी बात सुन,
0: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया बहन।
1: मेरी बात सुन।
0: हेलो
1: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
0: कहाँ से बोल रहे भैया?
2: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
1: अब ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की बॉलीवुड अपडेट में प्यार, ज़ॉम्बीज और डायपर्स तीनों की स्टोरी है। कैसे? रणवीर सिंह नेक्स्ट मंथ से डायरेक्टर जय मेहता की ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो दिवाली तक शूट करेंगे और उसके बाद लेंगे पैटर्निटी लीव। फ्रॉम फाइटिंग ज़ॉम्बीज ऑन स्क्रीन टू सर्वाइविंग स्लीपलेस नाइट्स ऑफ स्क्रीन, ट्रस्ट मी, बेबीज आर टफर क्रिटिक्स देन ज़ॉम्बीज। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में है। फैंस उन्हें अपकमिंग फिल्म्स किंग और राका में भी देखने के इंतजार में हैं, तो वहां पर तो डबल सेलिब्रेशन चल ही रहा है। और सेलिब्रेशन की बात निकली है तो अगर तुम भी किसी स्पेशल ओकेजन की प्लानिंग कर रहे थे या बस किसी को सरप्राइज देना चाहते हो तो एक स्पार्कलिंग सरप्राइज अपडेट मेरे पास भी है। आरके जूल्स लेकर आए हैं एक अमेजिंग ऑफर, $250 का गिफ्ट कार्ड विद देयर एक्सक्विजिट कलेक्शन ऑफ स्टनिंग ज्वेलरी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस तुम्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ आरके जूल्स पर, क्योंकि डायमंड्स हो या रिलेशनशिप हो, दोनों में शाइन बनी रहनी चाहिए। और शाइन की बात हो ही रही है तो इंस्टाग्राम और एक्स पर जाकर मेरे प्रोफाइल पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, यानी कि जाकर मुझे फॉलो करें। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलते हैं मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: रंग रेजा।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucas destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
10: It's 9:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर आज यानी कि 13th of July को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे टू यू है ना, तो मिर्ची की तरफ से, मेरी तरफ से तो हैप्पी बर्थडे है विद अ पप्पी एंड अ झप्पी। आज का दिन ऑफिशियली वीआईपी है क्योंकि आज बहुत सारे वीआईपीज तुम्हारे साथ अपना हैप्पी बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले वी गॉट हैरिसन फोर्ड। हाँ जी, वही एक्शन लेजेंड जिन्होंने हमें इंडियाना जोन्स और हान सोलो जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए हैं। और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं एवर सो क्लासी सर पैट्रिक स्टुअर्ट, ग्रेस, करिश्मा और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, हैशटैग ऑनेस्ट गर्ल्स। और अगर यार तुम्हारी फैमिली तुम्हें हर बात पर कहती है कि तुम कॉमेडी बड़ी अच्छी कर लेते हो, तो तुम अपना बर्थडे शेयर कर रहे हो विद द हिलेरियस एक्टर कॉमेडियन केन जंग। साथ ही हम बर्थडे विशेष भेज रहे हैं चीख चीख कर कॉमेडियन शीख मरीन को, पावर हाउस सिंगर डेबोरा कॉक्स को एंड टॉम केनी को, द अनफॉरगेटेबल वॉइस बिहाइंड स्पंज बॉब स्क्वेयर पैंट्स। और आज जो लोग भी अपना स्पेशल डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट करें, उनको तो हैप्पी टू यू है ही। अगर किसी और को विश करना चाहते हो तो मुझे अपने बर्थडे भेज सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब खनखनाने की और चमचमाने की बारी आ चुकी है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर.
2: Rajyo's wishes everyone, happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,065, $4,065 पर अंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. अगर आपके पास पुरानी गोल्ड ज्वेलरी है जो आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी ज्वेलर से खरीदी, राज ज्वेल्स की कैरेटोमीटर के साथ आप अपना पुराना गोल्ड टेस्ट कराते हुए एक्सचेंज कर सकते हैं फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू में, जहां आप नई 22 कैरेट गोल्ड के डिजाइन हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी हो, आप एक्सचेंज करके नए सोने के गहने घर ले जा सकते हैं. और हमारी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे, 9 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी, बिना किसी डाउन पेमेंट के गोल्ड का प्राइस लॉक आज करके ज्वेलरी कर ले जाएं और 9 महीने में पैसे दें. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू.
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे बातें करनी है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Priscilla, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग एंड अब टाइम हो चुका है फॉर
2: मिर्ची आवर का थ्री.
1: सबसे पहले हॉलीवुड स्टार मैट डेमन मुंबई में सिर्फ फिल्म प्रमोट नहीं कर रहे हैं बल्कि फूडी मोड में भी आ चुके हैं. चाय और बन मस्का के बाद उन्होंने डिनर किया है एट द आइकॉनिक द बॉम्बे कैंटीन. नंबर टू पर अ सैड अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा. सैम नील, जिन्हें हम डॉक्टर एलन ग्रांट के नाम से जुरासिक पार्क से याद करते हैं, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78. अर्लियर दिस ईयर ही हैड शेयर्ड दैट ही वॉज कैंसर फ्री आफ्टर ट्रीटमेंट एंड टुडे हिज फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिमेम्बर an actor who made dinosaurs feel real and inspired generations of movie lovers. And lastly, India has absolutely smashed it at the 56th International Physics Olympiad. Hamare 5 ke 5 student brought home gold medals and India has jointly secured world number 1 rank. And that's it for Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhe connect karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par connect करने के लिए नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं.
2: यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा.

0: से प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए, राइट?
1: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
0: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह,
1: आओ मिलो,
0: चिलो चलो,
1: कच्चा धागा,
0: रेस लगा लो, दस पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, इसको ना प्रैक्टिस करिएगा आप, तेज़ से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े, या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
0: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: हिरण का बच्चा,
0: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
0: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा
0: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरु।
6: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
7: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సోలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
8: గులాబీ సాడీ అని లాలి లాల్ లా, దిస్తే మే భారీ రాజా ఫోటో మజా కా.
9: టీ సిరీస్ ప్రెజెంట్ ద మాల్ 4.
10: ఉల్లాడి బినా చట్టని కైసె బని.
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: Tera kya hoga, Kalya?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: अब मिर्ची का
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स पर टाइम हो चुका है स्टार्स की बात करने का।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, ओवरथिंकिंग बंद करो। जो टेंशन तुमने अपनी ट्रेलर बना रखी है उसे रिलीज करने का टाइम आ चुका है। अब वो मूवी बनती जा रही है, अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, वही तुम्हारा सुपर पावर है। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी वृषभ राशि, आज बोरिंग को बाय बाय बोलो। अगर चॉइस मिले ड्यूटी और हैप्पीनेस में तो थोड़ा सा हैप्पीनेस भी डिजर्व करते हो। लाइफ कोई अनपेड इंटर्नशिप नहीं है यार। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, वॉलेट और लिस्ट का रिश्ता थोड़ा हेल्दी रखना पड़ेगा। मटेरियल चीजों को इतना भी इंपॉर्टेंस मत दो कि पीस ऑफ माइंड ईएमआई पर चली जाए। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, क्रिएटिविटी का फुल चार्जर लग गया है। अगर कोई आइडिया दिमाग में आ रहा है, डोंट ओवरथिंक, जस्ट स्टार्ट। तुम खुद ही अपनी पोटेंशियल देखकर सरप्राइज हो जाओगे। लकी कलर इज गोल्डन येलो, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, सब आंसर्स आज नहीं मिलेंगे बेबी। Honestly, यार जरूरी भी नहीं है कि सारे आंसर्स आज ही मिल जाएं। ट्रस्ट योर सेल्फ, तुम ही अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो, बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट है। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 8। वर्गो यानी कन्या राशि, स्माइल आज तुम्हारा बेस्ट एक्सेसरी है। लोग कैसे बिहेव करते हैं वो उनकी स्टोरी है, तुम कैसे रिएक्ट करते हो ये तुम्हारा सुपर पावर है। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन रेड, लकी नंबर इज 17। और अब पहली 6 राशियों का शक दूर हो चुका है, तो अगली 6 राशियों की बारी है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स, टाइम फॉर सम मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: the budget. मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए. 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी. और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में. सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम.
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. इट्स

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इजलन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है.
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो कंप्लीट करते हैं हमारा राशि जोन विद द रिमेनिंग सिक्स राशिज।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी तुला राशि, करियर में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज नॉक कर सकती है, दरवाजा खोलना मत भूलना, कॉन्फिडेंस पे फुल वॉल्यूम रखो। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 26। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज रूटीन को थोड़ा सा रीमिक्स करो, नया अप्रोच ही पुरानी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन बन सकता है, इनोवेशन इज योर की वर्ड टूडे। लकी कलर फॉर यू इज कॉपर, लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, पैसा बनाना अच्छी बात है, शॉर्टकट्स लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, शॉर्टकट वर्क नहीं, फ्यूचर वाला तुम्हें थैंक यू बोलने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा वेकेशन दे दो यार, एक काम अच्छे से करोगे तो रिजल्ट भी शेफ्स किस आने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 3। अग्वेरियस यानी कुंभ राशि, पॉजिटिव एटीट्यूड आज ही का सीक्रेट वेपन है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन माइंडसेट उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्माइल करके शुरू करो, जीत खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। लकी कलर फॉर यू इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, दिल की बात बोल दो यार आज, बस वॉल्यूम कंट्रोल के साथ बोलना, चिल्ला चिल्ला कर अपने दिल की बात नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो और अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 11। एंड दैट वॉज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी के लिए जल्दी से जाओ मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Listener mein, back-to-back gana sunega.
11: Back-to-back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: with Priscilla. It's hot.
1: लगता है आज मिर्ची मॉर्निंग्स ना एक्सप्रेस ट्रेन की तरह निकल गई। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें स्पोर्ट्स अपडेट देकर जाती हूँ। सबसे पहले यानिक सिनर हैज डन इट अगेन। वर्ल्ड नंबर वन ने विंबलडन का टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड करते हुए अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा दिया है। ये उनका सेकेंड स्ट्रेट विंबलडन टाइटल है, फिफ्थ ग्रैंड स्लैम और 100 ग्रैंड स्लैम मैच विक्ट्री भी था। एंड प्राइज मनी अराउंड 3.6 मिलियन पाउंड। यानी कि विंबलडन की ट्रॉफी तो घर गई, साथ में बैंक अकाउंट भी फुल एस मार के गया है। और एक स्टोरी जिसने दुनिया भर के फैंस की आंखें नम कर दी, लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद अपनी लेट मदर को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। पोस्ट मैच इंटरव्यू में उनकी आंखों में आंसू देखकर पूरी टेनिस दुनिया इमोशनल हो गई। कभी कभी ट्रॉफी सिर्फ जीती नहीं जाती है यार, किसी अपने को डेडिकेट भी की जाती है। और वो अपना अब अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो ये डेडिकेशन थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी नोट पर ये याद रखो कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन पूरी हिम्मत के साथ खेलना बहुत जरूरी होता है। वाह, क्या बात कही है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग कम्यूट, योर किचन प्लेलिस्ट या फिर योर ऑफिस का ड्राइव और कभी कभी ट्रैफिक जैम का हिस्सा भी। ऑफ एयर भी हम दोस्त बन सकते हैं। फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्सपर्ट, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सोने के लिए बेस्ट जगह कौन सी हुआ करती थी?
1: क्लासरूम। सारा जमाना
2: सारा का दीवाना। मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और बात हो अगर मंडे की और सोने की, उसके साथ अगर बात हो तो ये सोने पे सुहागा नहीं होता है, सोने पे आप भागा होता है, क्योंकि मंडे एक ऐसा दिन होता है कि काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, सोने का मन ज्यादा कर रहा होता है, लाइक रेस्ट इज बेस्ट, ये हमारा दिल कह रहा होता है। बट अफसोस संडे खत्म हो चुका है, मंडे आ चुका है, एंड स्कूल में भी यही हुआ करता था कि यार मंडे के दिन ना नींदें बहुत आया करती थी, एंड यस क्लासरूम यूज टू बी द बेस्ट प्लेस, जहां बढ़िया नींद आया करती थी, स्पेशली हिंदी और ज्योग्राफी के पीरियड में। एंड एक्चुअली ना मैथ्स के पीरियड में दिमाग तो सो जाता था, लेकिन आंखों की मजाल नहीं होती थी कि वो बंद हो जाए। खुदा का खौफ हो ना हो, मैथ्स टीचर का खौफ हमेशा रहा करता था बॉस। एंड यू नो, मेरी एक बार ना बड़ी बेइज्जती हुई थी, खुशी खुशी बता रही हूँ आज, लेकिन उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा बेइज्जत हुई थी मैं, जब ज्योग्राफी की क्लास में ना मैं सो गई थी और थोड़ी देर बाद ना सब शांत हो गया। वो शांति इतनी डिस्टर्बिंग थी कि मेरी आंख खुल गई, एंड इट वॉज देन दैट आई नोटिस्ड कि मैम ने पढ़ाना तो बंद कर दिया था और वो मेरी डेस्क के पास आकर खड़ी मुझे देख रही है। जैसे ही मेरी आंख खुली ना, तो मैंने देखा कि पूरी क्लास मुझे ही देख रही थी मैम के साथ साथ। फिर मैम ने मुझे हड़काया और टैप पर मुंह धोने के लिए भेज दिया। बाकी हिंदी पीरियड में तो नींद इसलिए आ जाया करती थी क्योंकि इंटरवल के बाद का पहला पीरियड हुआ करता था ना, इसमें मधु मैम का कोई कसूर नहीं था, कसूर तो टिफिन के पराठों का था यार, उनका नशा ही इतना तगड़ा हुआ करता था। और इसी के साथ अब नींद बुलाने की नहीं, नींद भगाने की बारी है, क्योंकि अब मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड फिल्म को बनाने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसे हाथों में लिया, हथेली पर रखकर ताली बजाई और फिर ये मसाला खा गए और उसके बाद उन्होंने बनाई द मूवी भूत
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Zara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. भूत एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड टाइप कुछ नहीं था, ना गाने, ना 2.5-3 घंटे की लंबी फिल्म. मूवी की स्टोरी इज बेस्ड अराउंड द हीरोइन और मूवी एक हॉरर स्टोरी थी एंड द फिल्म वाज अ सक्सेस. इस मूवी को प्रमोट करने के लिए बड़े स्पूकी पोस्टर्स बनाए गए थे ताकि हम जैसे लोग उन्हें देख कर बोले, यार ये तो बड़ी डरावनी फिल्म लग रही है, बड़ा मजा आएगा इसे देखने में. और पूरी मूवी देखते हुए ना मुझे जरा डर नहीं लगा था, लेकिन एक पॉइंट पर मेरी चीख निकल गई थी और थिएटर में एक लड़कों के गैंग को इस बात पर ना बड़ी हंसी आई थी और मौका मिल गया था उन्हें कल्ले फाड़ फाड़ के हंसने का. वो सीन जब उर्मिला आईने में खुद को गौर से देख रही थी और फिर वो आईने के करीब जाती है, फिर और करीब. वो अपना हाथ उठाती है आईने को छूने के लिए और एकदम से डोरबेल बज जाती है. आई एम श्योर राम गोपाल वर्मा ने ये सीन इसी माइंडसेट से डायरेक्ट किया होगा कि देखने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए. और मेरी तो हो गई, आपकी हुई कि नहीं हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल मुझे ये पता है कि कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo maza kar.
5: T-Series present Dhamaal 4.
6: Gulabi bina chatni kaise bani.
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची का।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: It's 11:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
4: इसलिन, न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on baking charges. Shop before 19 July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey, and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
6: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है, भूत की सक्सेस के बाद राम गोपाल वर्मा ने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गए बॉलीवुड के एक्टर्स, अब मैं हॉलीवुड के एक्टर्स को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। 2003 में जब भूत हिट हो गई तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हॉलीवुड एक्टर्स को लेकर फिल्म बनाएंगे, एंड द फिल्म वॉज टाइटल्ड विद इन। इट हैड टू बी रिलीज बाय लेट 2006। And instead of a Mumbai apartment, the film was to be set in New York, in an apartment in Manhattan. इस फिल्म में कोई इंडियन एक्टर नहीं होता, लेकिन उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा ने इस कास्ट की डिटेल्स बताने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। Percept Picture Company was to produce the film at a budget of $6 million. लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको सारी बातें बताते हुए इतना हाइप दिया, उतना ही हाइप इस फिल्म को मिला, एंड देन द मूवी गॉट शेल्व्ड। मूवी गॉट शेल्व्ड का मतलब, अरे सिंपल, मूवी को ताक पे रख दिया। उसके बाद तो वो ना उतर पाई, ना उसे किसी ने उतारा, वो वहीं की वहीं ठहर गई है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in.
3: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग, जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इस सैयारा
4: नंबर 20।

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
7: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
8: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
12: Number 16.

लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती। सोचिए, सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल, एंड देन आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ, एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी। सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे। एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग भी तो दिखाओगे। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं। इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं, वक्त मांगती है। सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क्ड फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83 अजहर ना, नॉट सो मच। क्या नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल, गाना याद है ना? वेल, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20। नंबर

के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: क्लब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी इट्स हॉट
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
5: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
6: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन
7: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2
8: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
11: Number 5.

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request.

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूं यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Amli Line in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन। लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची Top 20. Number 1.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स. It's 12 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. It's 12:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: वाह वाह वाह वाह रफी साहब, वाह वाह वाह वाह। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाने से जो आपने पर्दा उठाया है,
1: गजब ढा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है।
2: अच्छा रफी साहब का बचपन ना अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में बीता है, जहाँ उनका जन्म भी हुआ था।
0: उनका निकनेम था फीको, हाउ क्यूट। और तब उनकी सिंगिंग की शुरुआत पता है कैसे हुई? उनके गांव में एक फकीर अक्सर घूमता था और कुछ कुछ गाता रहता था, और ये छोटा सा फीको उनको मिमिक करने की कोशिश करता था, उनके जैसे गाता था। इसीलिए शायद तभी से ये सीधा सादा फकीर बंदा रह गया था।
2: रफी साहब की नेक दिली, दरिया दिली के बहुत सारे किस्से। फिलहाल तो उनकी आवाज में किस्सा उन आँखों का, जिनके सिवा दुनिया में रखा क्या है।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है.
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: बेटा बात है ये 1985 की।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: 85 बोले तो
1: 1985। So, 1985 में फिल्म फेयर अवार्ड्स जब हुए थे तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में जितने भी नॉमिनेशन थे वो किशोर कुमार के थे और एक ही फिल्म के चार गानों के लिए वो नॉमिनेटेड थे। ये फिल्म थी शराबी और गाने थे दे दे प्यार दे, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, मंजिलें अपनी जगह है एंड इंतहा हो गई इंतजार की। मतलब सारे नॉमिनेशन किशोर कुमार के एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि किसको अवार्ड मिला है। बट किस गाने के लिए मिला, जिस गाने के लिए मिला वो हम यहाँ पे सुनेंगे। प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ, बप्पी लहिरी की कॉम्पोजिशन, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: आ जाओ आगरा वाले दिल्ली वाले मुंबई वाले चेन्नई वाले इंदौर वाले जो भी जहाँ से भी है सबके लिए डिस्काउंट।
2: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है। रास्ता चाहे जो हो मंजिल है विरानी ज्वेलर्स क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट viranijewelers.com गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
4: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: Radio Mirchi, it's hot.
14: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only on

0: कादर खान साहब के साथ एक चीज बहुत होती थी।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। कुछ इंटरेस्टिंग किरदार वो ऐसे लिखते थे कि उनको ही वो रोल निभाने को कह दिया जाता था। उनकी जर्नी एज अ कॉमेडियन इसी तरह से शुरू हुई थी। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मद्रास की हिम्मत वाला सर, वो मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने अजीब अंदाज में लिखा उसको, और मैं मिला यार ये मेरे डायरेक्टर इसको पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके पूरी स्क्रिप्ट दे दी इनको। अब डायरेक्टर ने पढ़ा, उसके साथ में कैसेट लगाया, रात भर वो आदमी सुनता रहा, और उसके बाद प्रोड्यूसर को सुबह बुलाया, दोपहर को फ्लाइट पकड़ के दोनों बम्बई पहुंचे। मैं कहीं शूटिंग कर रहा था, अरे बोले सर आप यहाँ, बोले हाँ ये क्या है, तुम क्या लिखा है, ये कौन करेगा ये रोल मुनीम का, यू हैव टू डू दैट रोल। और वो फिल्म में मैंने मुनीम का रोल किया, तो एक हफ्ते तक तो जितेंद्र और श्रीदेवी के तमाम जगह बैनर्स लगे हुए थे, एक हफ्ते के बाद सिर्फ कादर खान के बैनर लगे हुए थे, और यहाँ से मेरी कॉमेडी का ट्रैक चला।
0: पहले ये ना डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था कि खान साहब एक अच्छे राइटर थे या एक्टर, एक्टिंग में भी विलन ज्यादा अच्छे थे या कॉमेडियन, सभी में टू गुड थे यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन.
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on.

0: रेखा का मिड 80s का एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस इंटरव्यू में जब उनसे उनकी हॉबीज के बारे में पूछा गया तब सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और गार्डनिंग का शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है और कपड़ों का शौक है, मतलब डिजाइन करने का शौक है, मेकअप का तो शौक है ही, ये तो सब जानते हैं। एंड आई लाइक लुकिंग एट प्रिटी फेसेस, और हेयर स्टाइल्स का शौक है, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत चीज़ है जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वो सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। ऑफकोर्स सबसे ज्यादा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ।
0: वेल, बीच में रेखा के एक फिल्म बनाने की बातें हुई थी लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इसी इंटरव्यू में इनसे ये भी कहा गया कि काफी लोग ये कह रहे हैं, उनकी ये राय है, सलाह है कि अब रेखा को सेटल हो जाना चाहिए। इस बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: बहुत से लोग बहुत सी राय देते हैं लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे, राय सुनते हैं लेकिन अल्टीमेटली जो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते।
0: वेल, इसके बाद 1990 में रेखा ने शादी की थी लेकिन वो उनकी लाइफ का एक मेजर सेटबैक बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

मस्त गाना है पड़ोसन फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका वीडियो भी बड़ा मस्त है, 12-13 लड़कियाँ ऐसे मजे में साइकिल चला रही हैं और गाना गा रही हैं। और काफी जगह इस गाने में मुझे ऐसा लगा कि सायरा बानो जी जो इस गाने जिन पर ये गाना मेनली पिक्चराइज्ड है वो शायद साइकिल चला ही नहीं रही है, उनके लिए कोई दूसरा कोई डबल वो साइकिल चला रहा है, खास करके जहाँ जहाँ उनका क्लोजअप लिया गया है ऐसा मुझे लगा। बाकी काफी जगह लगा भी कि वो चला रही हैं। एनीवे मैं इसका वीडियो जब देख रही थी ना तो यूट्यूब के कमेंट्स में एक कमेंट था कि ये मैसूर के कृष्ण राजा सागर डैम का जो आसपास का एरिया है वहां पे गाना शूट हुआ है और आज की डेट में भी वो जगह जो है उतनी ही खूबसूरत है जितनी की इस गाने के वीडियो में दिख रही है, मतलब उसको इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। ये हुई ना बात, और बातों पे फिलहाल ब्रेक, मतलब कि म्यूजिकल ब्रेक। हम सुनेंगे एक रोमांटिक गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची

उफ, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, फिल्म का नाम राजा रानी। और वैसे भी ना मुझे वो गाने बहुत पसंद है जिसमें ऐसे राजा रानी का जिक्र होता है। जैसे याद करे तो अभी तो मुझे 90s के गाने याद आ रहे हैं, राजा को रानी से प्यार हो गया, या किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। एक्चुअली एक शेर भी है मेरे पास राजा रानी वाला, नाजिर वहीद नाम के शायर हैं, इनका शेर है कि लिखते लिखते ही लड़ी आंख जो रानी से मेरी, लिखते लिखते ही लड़ी आंख जो रानी से मेरी, फिर तो राजा को निकलना था कहानी से मेरी। चलिए एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे रानी अपने राजा को पुकार रही है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
2: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
3: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
4: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। It's hot.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
10: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
15: It's 2:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only on

1973 की फिल्म ब्लैकमेल का ये सुपरहिट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गाना सुपरहिट है लेकिन पिक्चर खास चली नहीं थी, जिसकी वजह ये कही जाती है कि तब तक धर्मेंद्र साहब ही मैन एक्शन हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुके थे, लेकिन उनका ये वाला रोल पूरा रोमांटिक। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब तब तक लीड रोल्स करने लग गए थे और उनको विलन के रोल में लिया गया था। ऑल्सो राखी गुलजार तब प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। सो ऑल दीज फैक्टर्स काइंड ऑफ पुल्ड द फिल्म डाउन। हो जाता है लाइफ में कई बार, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। वो क्या है, गाने की लाइन्स थी, सोचा था क्या क्या हो गया, ढूंढो मुझे मैं कहीं खो गया, मैं भी कहीं खो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, तिनक दिन दिन तिनक दिन, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सिट्टी बज गई, चालबाज फिल्म का गाना था। लेकिन यहाँ जो अभी हम गाना सुनेंगे वो है एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग दो रास्ते फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

एक सिंगर थे जिनको नोबडीज वॉइस कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है नोबडीज वॉइस की जगह ही वॉज एवरीबडीज वॉइस। बहुत ही यूनिक आवाज, सुपर टैलेंटेड मन्ना दे साहब। और मन्ना तो उनको प्यार से बुलाते थे, उनका असली नाम था प्रबोध चंद्र दे। और ये मन्ना उर्फ प्रबोध जब कॉलेज में थे ना तो अपने दोस्तों को बहुत एंटरटेन करते थे, ऑफकोर्स गाने सुना सुना के। और साथ ही साथ इन्हें कुश्ती और बॉक्सिंग का भी बहुत शौक था और उसमें भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे। तो मतलब है बिशुम बिशुम धोबी पछाड़ वाले मुश्तंडे पहलवान तो थे बाहर से एकदम रफ एंड टफ, लेकिन अंदर से मोम दिल, इतने टैलेंटेड, इतने संवेदनशील। तो मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म का ये क्लासिक एवरग्रीन गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन

1967 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जूल थीफ का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग अशोक कुमार साहब की थी, जिन्होंने मेन नेगेटिव रोल निभाया था, क्योंकि उस टाइम जब ये फिल्म प्लान हो रही थी उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो जब फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय आनंद उनसे मिलने गए तो उन्हें अशोक कुमार को काफी कन्विंस करना पड़ा। फाइनली अशोक कुमार माने, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे कि सुबह 11 बजे वो मेकअप वेकअप करके एकदम तैयार होके सेट पे पहुंच जाएंगे और शूटिंग शुरू हो जाएगी। 1 बजे उनका लंच टाइम, 2 बजे शूटिंग रिज्यूम, 5 बजे पैकअप, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कोई बिशुम बिशुम मार धाड़ मुक्के वाले फाइट सीन्स नहीं करूंगा। तब विजय आनंद साहब ने उनको बताया कि भाई आपका ये जो विलन वाला रोल है इसमें ऐसा लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ये विलन मसल से नहीं माइंड से लड़ता है, एकदम इंटेलिजेंट सोफिस्टिकेटेड विलन है। तो बस ये सारी बातों से फिर अशोक कुमार साहब मान गए। आप भी मान जाइए जल्दी से, मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलन।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Listener MA, back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on.

कतई सुंदर गाना घर फिल्म का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार ने इसे लिखा है। अच्छा, ये घर मूवी, इसमें विनोद मेहरा एंड रेखा थे। एक्चुअली इस फिल्म में पहले विनोद मेहरा के ऑपोजिट मौसमी चैटर्जी को लिया जाने वाला था, लेकिन उन दिनों दोनों के ऐसे रिलेशनशिप के रूमर्स थे, तो रूमर्स को हवा ना लगे, आग में घी ना डले, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और आप बताइए, आपके शहर का मौसम क्या कर रहा है? आग बरसा रहा है, पानी बरसा रहा है, हवा चला रहा है, या आशिकाना हुआ जा रहा है? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: It's 3:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
14: Purani Jeans with Charu.

1989 की टॉप सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया का ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इस गाने में ना मेरा फेवरेट पार्ट पता है कौन सा है? ये वाला। And do you know, ये आवाज उषा मंगेशकर जी की है। जी, वन ऑफ द मंगेशकर सिबलिंग्स। और उषा मंगेशकर जी के गाए गानों में मोस्ट पॉपुलर वंस आर मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़की डली, या वो आरती मैं तू आरती उतारू रे संतोषी माता की। चलिए इन सिबलिंग्स में से अब आशा भोसले जी की आवाज में गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo maza kar.
4: T-Series present Dhamaal 4.
5: Gulabi bina chatni kaise bani?
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

मंडे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, काम तो बिल्कुल भी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। क्योंकि यार मंडे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग अभी भी वीकेंड टाइम जोन में होता है। बॉडी ऑलरेडी ऑफिस तो पहुंच जाती है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी सैटरडे के किसी लंच टेबल पर बैठा होता है। कोई अभी भी वीकेंड की फोटोज देख रहा होता है, कोई लेफ्ट ओवर्स फिनिश कर रहा होता है, और कोई सीक्रेटली कैलकुलेट कर रहा होता है कि नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड कितना दूर है। लेकिन मंडे शाम आते ना रियलिटी ऑफिशियली एक्सेप्ट हो ही जाती है कि चलो ठीक है, वीक शुरू हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात तो जरूर है कि मंडे इवनिंग आते आते प्रेशर कम हो ही जाता है, सुबह वाली वो रश निकल जाती है, मीटिंग्स खत्म हो जाती है, और अब थोड़ा सा अपना टाइम मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, मंडे को भी इतना सीरियसली नहीं लेते, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा मस्ती और थोड़ी शाम शानदार हो जाए। और आप भी बताइए कि आप ऐसे मंडे को कैसे सर्वाइव करते हो, आपका सीक्रेट वेपन क्या है, कॉफी, चाय, म्यूजिक या प्योर विल पावर। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस शाम को शानदार बनाने के लिए मेरा जो सीक्रेट वेपन है वो है आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: ये खुद गुस्से में हो.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियों को कमेंट पास न करें. लड़कियों
2: की सुरक्षा की सुरक्षा की बात की
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
2: हेलो.
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके
3: ओके ओके ओके मेरी बात सुनिए. कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं नहीं 10:30 बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं
3: जी.
2: मैंने आपको गुस्सा दिलाया, किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए, मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके, कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
10: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search istunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: Islin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucas destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on baking charges. Shop before 19 July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
15: Sham Shanda, let's do not. Have a funky time.
16: मूवी हो या मूड स्विंग दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और एक हाथ में रिमोट दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देयर इज नो ग्रीस नो गिल्ट ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Sham Shandar. Let's do
1: Nautanki. Have a funky time. अगर कैलेंडर भी बॉलीवुड फैन निकला तो शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज की डेट है 13 जुलाई। और जैसे ही मैंने देखा कि यार आज की डेट इस 13 जुलाई, दिमाग में तुरंत ही एक लाइन आ गई, 13 साथ। बस फिर क्या, पूरा बॉलीवुड रिवाइंड हो गया। सोचा कि यार आज का जो दिन है ना, इन शब्दों के नाम कर देना चाहिए, 13 साथ। तो देखते हैं बॉलीवुड में कितने सारे गाने हैं जहां 13 ये वर्ड यूज होता है। तो आज का मिर्ची चैलेंज शुरू। मुझे बताइए ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग जिनके टाइटल या मुखड़े में या तो 13 है या तो 7। और हाँ, नो गूगल नो GPT, सिर्फ अपनी याददाश्पर डिपेंड कीजिए और DM कीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI और मैं बजाऊंगी वो गाना आपके लिए। चलिए देखते हैं न्यू जर्सी की बॉलीवुड मेमोरी कितनी स्ट्रांग है और शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त गाने के साथ जिसमें है 13, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

अजीब बात है ना, सिर्फ एक शब्द भी कितनी अलग अलग फीलिंग्स दे सकता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज की डेट तो है ही कमाल की। जैसे कि 13 जुलाई यानी तेरा साथ या फिर साथ तेरा, जिस भी तरीके से बोल लो बात तो एक ही है। और बॉलीवुड में तेरा ये शब्द भी बहुत प्यारा है, कभी ये प्यार बन जाता है जैसे कि गाना लाइक तेरा होने लगा हूँ, कभी वादा बन जाता है जैसे कि मैं तेरा बन जाऊंगा, कभी पागलपन विद द सॉन्ग मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तो कभी सिर्फ एक एहसास। एक ही शब्द लेकिन हर कंपोजर हर लिरिसिस्ट उसे अलग रंग से दे देता है, और इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ म्यूजिक नहीं इमोशंस की डिक्शनरी भी लगती है। तो आप भी बताइए दोस्तों, आज की इस खास तारीख पे, तेरा साथ की तारीख पे, ऐसा कौन सा गाना है जिसमें तेरा ये वर्ड आपके लिए बहुत मायने रखता है, और ये गाना पूरी लाइफ के लिए अगर रखना हो या बजाना हो तो कौन सा होगा? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए तेरा के इस म्यूजिकल सफर को आगे बढ़ाते हैं एक खूबसूरत बॉलीवुड गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shandar,
1: let's do not donkey, have a funky time. पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेक डाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्सेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Good evening, Mr. Srivastav. I'm modern school. Se bol raha hun, aapke bete ke school se. How are you?
3: Thank you.
4: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
4: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: मतलब गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
3: आओ मिलो
4: शिलो शालो,
3: शालो
4: कच्चा धागा,
3: रेस लगा लो,
4: दस
3: पत्ते तोड़े,
4: एक
3: पत्ता कच्चा।
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
3: तोड़े
4: या मिस्टर श्रीवास्तव,
3: दस पत्ते तोड़े,
4: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
3: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
4: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
3: मिस्टर
4: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कोई सुनेगा
4: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: Island, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Autocars destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Autocars, world's favorite jeweler.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल न्यूज खोलो ना तो हर जगह एक ही वाइब है, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, मार्केट शिफ्ट। और नेचुरली जब इतना सब चेंज हो रहा हो तो नए होम बायर्स के माइंड में एक ही सवाल आता है कि क्या अभी सही टाइम है या वेट करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं, राइट गाइडेंस मैटर करता है, क्योंकि हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बस उसे सही तरीके से कोई समझाने वाला चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे सिचुएशन में भी बोले कि यार डोंट फियर, वी आर हियर। तो चलिए उसी के लिए बुलाते हैं बीश को फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल वीकेंड। इट सीम्स इट विल बी हॉट इन नेक्स्ट फ्यू डेज एंड द यूएस मार्केट स्लिप्स एज ऑयल जंप्स। मॉर्गेज रेट्स जस्ट नज्ड अप स्लाइटली टुडे एंड हियर व्हाट दैट मींस फॉर यू। रेट्स आर स्टिल वोलेटाइल, but don't let that spook you. These daily shifts are normal, like the tide. They rise and fall with economic currents. Great time to get pre-approved before listing search. If you've been waiting for the right moment, like this could be it. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Remember, listeners, refinances are still alive and well. At the same time, home values are on the rise, creating incredible opportunities to cash out or consolidate debt by paying off high interest rate credit card debts, student loans, private loans. And don't forget, Lion Mortgage is also offering great rates on investment properties. We offer second loans. So, and don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying a dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: New York mein lambi buildings hoti hai na? Train se dekha tha.
4: Shashi, wo Manhattan hai.
3: Men? Hatton.
5: Man, as me. Hat, topi. Or, mom, what's tan in Hindi?
4: Tan matlab, wo, dhup ki chhap.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
8: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shanda. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यू जर्सी की समर ना घर में बैठने के लिए बनी ही नहीं है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, फिर चाहे फार्मर्स मार्केट हो, फूड फेस्टिवल्स हो, बीच ट्रिप्स, इवनिंग वॉक्स, कॉन्सर्ट्स, काउंटी फेयर्स, या बस मौसम को देखते रहना। वैसे यार आजकल ना मन करता है कि घर थोड़ा लेट ही चलते, क्योंकि समर की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि प्लान्स ना बहुत बड़े होने की जरूरत नहीं। कभी एक आइसक्रीम, कभी एक पार्क की वॉक, कभी बस कार की विंडोज डाउन करके बॉलीवुड सुनते हुए ड्राइव, और शाम यादगार बन ही जाती है। तो इस हफ्ते न्यू जर्सी चैलेंज ये है कि एक नई जगह जरूर एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके पास कोई हिडन जेम हो, फिर चाहे वो कॉफी शॉप, पार्क या सनसेट स्पॉट हो, तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और चलिए न्यू जर्सी की इस खूबसूरत समर इवनिंग को बॉलीवुड के सुरों से और भी रंगीन बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नजर के शौक को ना पोएट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डेलिबरेट बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो ओम को शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। Right here on Mirchi, it's hot.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-tunky, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हाँ, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो यह है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि ये गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और सिक्स पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक Our eyes off. वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द यानी दर्द दे डिस्को, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Mirchi.
1: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello. Hello.
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: तू चोरी करने के लिए गया?
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया यहाँ पे
2: ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
3: एक बात सुन,
2: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
3: बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
12: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
13: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफर की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ताजा खबर देसी न्यूज विदेशी न्यूज पड़ोसी की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ। नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com। गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy or
9: confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ। अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR। काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
14: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: expired 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलेडी। और मजे की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा, और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर। जी हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे, और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेपी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे, जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवानगी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड को अगर एक टाइम मशीन में बंद करो ना, तो यार धूम ताना एक ऐसा गाना होगा फ्रॉम ओम शांति ओम का हिट एल्बम, जो उसका गोल्डन बटन होगा। जी हाँ, मतलब धूम ताना एक प्योर रेट्रो सेलिब्रेशन था। श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज ने 70s के फिल्मी रोमांस को बिल्कुल फ्रेश स्पार्कल दिया था। और कंपोजर्स विशाल शेखर ने इस गाने को ना इंटेंशनली ओल्ड स्कूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंपोज किया था, मतलब वॉयलेंस यूज करके, ट्रम्पेट्स, ड्रामेटिक बिल्डअप्स, और जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का दौर का जो चार्म था वो वापस आ गया हो। और मजे की बात तो ये है कि यार शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को डिजिटली क्लासिक फुटेज के साथ मर्ज किया गया था, जिसमें ना उन्हें लेजेंडरी स्टार्स के एरा में सीमलेसली फिट कर दिया गया था, जैसे कि राजेश खन्ना या जितेंद्र। और फराह खान ने पर्सनली हर फ्रेम सुपरवाइज की थी ताकि नॉस्टैल्जिया ऑथेंटिक लगे। वैसे तो यार ये गाना टेक्निकली ब्रिलियंस था ही, बट उसी के साथ साथ काफी रिकग्नाइज्ड भी था, क्योंकि इस गाने को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, स्पेशली टू रिक्रिएट इट्स रेट्रो स्टाइल। तो दोस्तों, धूम ताना खुद एक कल्ट फेवरेट बन ही गया था फॉर इट्स इनोवेशन विजुअल ट्रिब्यूट। और इससे पहले कभी कोई एडिटिंग या कभी कोई गाना इस तरह से नहीं देखा गया था, और ये गाना उतना ब्यूटिफुल और 70s एंड 80s के फिल्मी रोमांस को भी वापस लेके आया, नॉट जस्ट साउंड वाइज बट फील वाइज एंड लुक वाइज। तो आप भी बताना कौन सा ऐसा दूसरा रेट्रो गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये हिट एल्बम ओम शांति ओम का ये हिट गाना धूम ताना बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना कि कौन सा वो ऐसा दूसरा हिट गाना है या हिट एल्बम है जो आपको भी बहुत पसंद है। उसके सारे गाने बजाएंगे यहाँ पर, और कहाँ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Could I speak to Komal, please?
1: Speaking.
2: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
1: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
2: ओके.
1: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेज में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है. इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
2: ओके.
1: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
2: हाँ.
1: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
2: कितने बजे गई थी आप?
1: साढ़े दस बजे.
2: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
1: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
2: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
1: मुझे बड़ी जरूरी काम
2: नहीं
1: था.
2: कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
1: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
2: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
1: एडवाइस,
2: खुद गुस्से में. आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
1: आप हद से ज्यादा
2: हद से क्या बात कर रहे हैं?
1: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
2: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
1: नहीं कर सकते आप.
2: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
1: की सुरक्षा की बात.
2: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
1: हेलो.
2: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल, हाय. हम ई टीजिंग को लेकर.
1: ओके ओके ओके
2: ओके ओके. मेरी बात सुनिए. कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी साढ़े दस बजे?
1: मिस्टर, ये आप हैं?
2: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
1: ओके, कुकड़ू कू.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: नो
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है.
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियां चल रही होंगी, किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चों को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफरों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफर का हिस्सा बनी है, तो मुझे जरूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at

0: Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
2: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
3: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
2: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
4: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
5: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
11: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
12: दोस्तों कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुम से ही बच जाए या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: की टाइम।
1: शाम शाम दालक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मोमोस टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपकी जिंदगी में एक प्लेयर फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। वो प्लेयर फ्रेंड आपको जिंदगी भर बताता रहेगा कि डेटिंग ऐप पर क्या करना है और क्या नहीं। जैसे कि मेरा एक प्लेयर फ्रेंड है, वो एक आरजी भी है, लेकिन उसका नाम मैं नहीं लूंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसने मुझे ये सिखाया है कि अगर आप एक बंदे हो एंड यू आर ऑन अ डेटिंग ऐप, आप अपने बारे में वो चीजें मत लिखो जो आपको लगता है कूल है, वो चीजें लिखो जो आपको लगता है कि लड़कियों को लगता है कि कूल है। जैसे कि अगर आपने ये लिखा दैट यू हैव अ डॉग, नाउ अ गर्ल इज गोइंग टू नॉट जस्ट फाइंड दैट वेरी क्यूट, लेकिन एक लड़की को ये भी लगेगा कि अरे ये कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ये अपने साथ साथ एक और जीवित चीज का ध्यान रख सकता है, एके अ डॉग। दूसरा, मान लीजिए यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, यू शुड टोटली राइट दैट इन द बायो, क्योंकि लड़की को ये लगेगा कि आप ए फनी हो, बी यू हैव अ जॉब, तो आप लुखे नहीं हो। सो जब आप डेटिंग ऐप पर जाओगे, जस्ट मेक इट अ पॉइंट टू रिमेम्बर कि डेटिंग ऐप में चीजें जो लिख रहे हो अपने हिसाब से मत लिखो। अपनी नजर में हॉटेस्ट लड़की को दिमाग में रखते हुए ऐसी चीजें लिखो दैट विल अट्रैक्ट हर। Isn't that a crazy AF tip? Aisi hi tips and tricks ke liye. Why don't you stay tuned and find me on Insta ya FB. Mera naam